0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে সমুদ্র অথবা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান তাদের উদ্দেশ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা। সঞ্জয়িতা প্রচার তরঙ্গে সকাল ছটায় সংবাদ দিল্লি কেন্দ্র থেকে। গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা একটু পরেই শুনতে পাবেন।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर

दी गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का चौथा युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार, दशकात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात श्रीराम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्रीराम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिक रूपेण सुदृढाः मानसिक रूपेण सबलाः आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्य श्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारम्भावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः अथ स्वस्थजीवनचर्यां च अङ्गीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारम्भेण मादकद्रव्यदुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरम्भः जातः।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: अस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य 28,000 स्थानेभ्यः 1,00,000 युवानः भागं गृहीतवन्तः। अत्र माय भारत इत्येतस्य राष्ट्रिय सेवा योजनायाः च स्वयंसेवकाः, महाविद्यालय विद्यालय विश्वविद्यालयानां प्रतिनिधयः, युवकमण्डलानाम् अशासकीय सङ्घटनानां च तथा आध्यात्मिक संस्थानां सदस्याश्च भागं गृहीतवन्तः। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया अवदत् यत् मादक द्रव्य मुक्त भारतस्य स्वप्नं केवलं जनसहभागितया यूनां नेतृत्वेन च पूर्णा भवितुमर्हति। विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य राष्ट्रीय शुभारम्भानन्तरं असौ फरीदाबाद स्थिते अमृत चिकित्सालये आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे एतदवदत्। डॉक्टर मांडविया एतत् शतसप्ताहकात्मकम् अभियानं यूनः राष्ट्र निर्माणे प्रवर्तयितुं राष्ट्रव्यापी जनान्दोलनम् इति वर्णितवान्। बिहार गुजरात मध्य प्रदेशानां च त्रयाणां विधानसभा क्षेत्राणां उपनिर्वाच

0: मतदानानां कृते अद्य मतगणनायै सर्वाः व्यवस्थाः कृताः सन्ति। बिहारस्य बांकीपुरे, गुजरातस्य मंजलपुरे, मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च मतदानं गतमासस्य 30 दिनांके जातम्। अद्य प्रातः 8 मतानां गणना आरभ्यते। प्रथमं पोस्टलिति मतपत्राणां गणना भविष्यति। तदनन्तरं प्रातः 8:30 मतदानयन्त्रेषु अभिलेखितानां मतानां गणना भविष्यति। निर्वाचनायोगेन त्रिषु राज्येषु सुगम गणनां सुनिश्चेतुं दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था कृतास्ति। मध्यप्रदेशे दतिया विधानसभा क्षेत्रस्य गणना प्रशासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालये भविष्यति, यत्र 20 गणना पट्टिकाः स्थापिताः सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः गंजम जनपदस्य कटक भुवनेश्वर ब्रह्मपुर तप्तापानी स्थलेषु शैक्षणिक सांस्कृतिक आधिकारिक कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य राष्ट्रपतिः कटक नगरे जगद्गुरु कृपालु विश्वविद्यालयस्य उद्घाटनं करिष्यति। एकादश दिनात्मकानां स्पर्धानां समापनानन्तरं ह्यः ग्लास्गो नगरे भव्य समारोहेण राष्ट्रमंडल क्रीडा सम्पन्ना। भारतमेकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थ स्थानम् अधिगतवत्। एतेषु 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से

0: गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का चौथा युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi yesterday, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and the National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. President Draupadi Murmu will begin a 3-day visit to Odisha today. During her visit, the President will participate in a series of educational, cultural and official engagements in Cuttack, Bhubaneswar, Brahmapur and Taptapani in Ganjam district. The President is scheduled to inaugurate Jagatguru Kripalu University at Cuttack today. Tomorrow she will travel to southern Odisha to offer prayers at the Ma Khanduni Devi temple near Taptapani before attending other official programs. All arrangements are in place for the counting of votes today for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 this morning. Postal ballots will be counted first, followed by the counting of votes recorded in electronic voting machines from 8:30 a.m. The Election Commission has made robust security arrangements to ensure smooth counting in all the 3 states. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than early expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports, according to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee MPC report released on Saturday. The growth estimates marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. U.S. President Donald Trump has said the negotiations with Iran, expected to take place through intermediaries, are scheduled

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में

0: देखेंगे। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। यह विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य

0: प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि 4:00 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी

0: और साइबर सुरक्षा डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week-long Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, says Viksit Bharat requires physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation. Counting of votes begins for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. Prime Minister Narendra Modi has launched the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation, completely free from self-destructive habits.
2: Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ke liye Nasha Mukt Yuva, is movement ka naam hi iske sankalp ko spasht karta hai. Kyunki aaj jab desh ne Viksit Bharat ka lakshya tay kiya hai, to iske liye avashyak hai desh ka युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: Outlining the campaign's ambitious 100-week roadmap, Mr. Modi detailed how every upcoming Sunday will feature dedicated activities spanning art, culture, sports and meditation to continually engage new participants. He said that coming 100 Sundays will absolutely become 100 strong steps in the direction of a completely drug-free India.
2: आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप्स।
1: Counting of votes are underway for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. Postal ballots has been counted first, followed by the counting of votes recorded in electronic voting machines. The Election Commission has made robust security arrangements to ensure smooth counting in all 3 states. In Madhya Pradesh, counting for the Datia Assembly seat has been held at the Government Polytechnic College, where 20 counting tables have been set up. The meeting of heads of the National Statistical Offices, NSO, of BRICS countries Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, UAE, will be held under the chair.

एचएम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। प्रस्तुत है भाव प्रधान गीतों और बातों का कार्यक्रम रसधारा। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मोहम्मद रफी की आवाज के साथ। सुनेंगे फिल्म एक फूल दो माली से प्रेम धवन का लिखा गीत, रवि के संगीत निर्देशन में।

नन्हे फरिश्ते यानी छोटे बच्चे। छोटे बच्चे की मुस्कान कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय को पिघला देती है, मन मोह लेती है। बच्चों का स्वास्थ्य भविष्य की पहली सुरक्षा है, क्योंकि बच्चे ही आने वाला कल हैं। और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रकृति ने जो सबसे अमूल्य उपहार दिया है वो है माँ का दूध। चल रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसे 1 तारीख से 7 तारीख तक अगस्त माह में मनाया जाता है। और उसी के अंतर्गत आज कार्यक्रम रसधारा में हम बात करेंगे स्तनपान और दुर्लभ बीमारियों से राहत की। जन्म के तुरंत बाद मिलने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, नवजात के लिए प्रथम टीके के समान कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के अनुसार जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना और पहले 6 माह तक केवल माँ का दूध देना शिशु के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और प्रतिरक्षा विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्तनपान न केवल सामान्य संक्रमणों से बचाता है, बल्कि कई दुर्लभ और गंभीर बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि स्तनपान जीवन रक्षक क्यों है? बिल्कुल, इस पर भी विचार करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले नन्हे मुन्ने राही से मिल लेते हैं।

0: कपटम।
1: देने बाय देने बाय थम।
0: नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो।

बात करें अगर माँ का दूध बच्चे के लिए जीवन रक्षक क्यों है, तो माँ के दूध में एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं, एंजाइम, विटामिन, खनिज और अनेक जैव सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जो शिशु को रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह पोषण का संपूर्ण स्रोत होने के साथ साथ संक्रमणों से लड़ने की प्राकृतिक शक्ति भी प्रदान करता है। मां का दूध आसानी से पच जाता है। शिशु के मस्तिष्क, आंखों तथा पाचन तंत्र के विकास में भी सहायक होता है। आज के हमारे कार्यक्रम रसधारा का विषय स्तनपान और दुर्लभ बीमारियों से राहत। तो जान लें दुर्लभ बीमारियां क्या हैं? वे रोग जो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश अनुवांशिक होते हैं और बचपन में ही उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के अनुसार, इन रोगों की समय पर पहचान और उचित उपचार अत्यंत आवश्यक है। हालांकि स्तनपान इन रोगों का पूर्ण उपचार नहीं, लेकिन यह ऐसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर संक्रमणों और जटिलताओं के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण सहायता करता है। स्तनपान

से शिशु को अनेक गंभीर और दुर्लभ स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षा मिलती है, जिनमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी बीमारियां हैं उन पर भी हम एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे फिल्म तारे जमीन पर से इस गीत को।

बात कर रहे थे हम कौन कौन सी वे प्रमुख बीमारियां हैं जिनसे संरक्षण मिलता है शिशु को स्तनपान से। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकाइटिस, नाम बिल्कुल हम आम जन के समझ से बाहर है, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो खास तौर पर जो जन्म से समय से पहले ले लेते हैं, ऐसे शिशुओं में होने वाली आंतों की एक गंभीर बीमारी है ये, और मां का दूध इसके जोखिम को काफी हद तक कम कर देता है। निमोनिया और फेफड़ों के संक्रमण का खतरा कम करता है, गंभीर श्वसन संक्रमण को कम करता है मां का दूध। मां के दूध में मौजूद प्रतिरक्षा तत्व संक्रमण पैदा करने वाले जीवाणुओं और वायरस से रक्षा करते हैं और बच्चे को बचाते हैं दस्त और आंतों के संक्रमण से। ईयर इन्फेक्शन, स्तनपान वाले बच्चों में इसकी संभावना बेहद कम देखी गई है। बात करें एलर्जी और अस्थमा की, तो कुछ बच्चों में एलर्जी और अस्थमा के जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है मां के दूध से। मधुमेह और मोटापा, लंबे समय तक स्तनपान से भविष्य में इन रोगों की संभावना भी कम हो सकती है। कई अध्ययनों में स्तनपान से अचानक होने वाली शिशु के मृत्यु दर को कम करने की बात भी कही गई है। दुर्लभ आनुवांशिक रोगों से ग्रस्त बच्चों में संक्रमण को कम करता है स्तनपान, प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत बनाकर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है मां का दूध। इतनी सारी खूबियों को अपने आप में समेटे हुए है मां का दूध, क्योंकि प्रकृति ने बच्चे को इस नेमत के साथ, इस अमृत के साथ भेजा है

माँ के दूध में उपस्थित कई ऐसे जैव सक्रिय तत्व शरीर में हानिकारक जीवाणुओं और वायरस के प्रवेश को रोकते हैं, जिससे शिशु का पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। यदि किसी बच्चे को कोई दुर्लभ आनुवांशिक रोग है, तब भी माँ का दूध उसे अतिरिक्त पोषण और संक्रमण से बचाव प्रदान करता है, जिससे उपचार के दौरान उसकी स्थिति बेहतर बनी रहती है। ये तो बात हुई शिशु की, लेकिन स्तनपान केवल शिशु ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। इससे प्रसव के बाद रक्तस्राव कम होता है, गर्भाशय सामान्य स्थिति में जल्दी लौटता है तथा स्तन और अंडाशय के कैंसर का खतरा कम होता है। इसके अतिरिक्त टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों का जोखिम भी घट सकता है। स्तनपान माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध को भी मजबूत करता है।

आसान शब्दों में कह सकते हैं, कुदरत का जादू है मातृत्व, और उस जादू की एक कड़ी है स्तनपान।

कार्यक्रम रसधारा में आज हम बात कर रहे हैं स्तनपान और दुर्लभ बीमारियों से राहत की। भारत सरकार तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाएं स्तनपान और दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से स्तनपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। पोषण अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और माताओं को सही पोषण तथा स्तनपान की जानकारी दी जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान परामर्श और स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संस्थागत प्रसव तथा नवजात के देखरेख को प्रोत्साहित करती है। आंगनवाड़ी केंद्रों और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर माताओं को स्तनपान के लाभ बताए जाते हैं। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत दुर्लभ रोगों की शीघ्र पहचान, उपचार केंद्रों का विकास तथा आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, जिसके माध्यम से अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और समुदायों में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इसी अभियान का हिस्सा है हमारा आज का ये कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम में सुन लेते हैं मास्टर रवि, अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाज में इस गीत को।

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं चूर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल कार्यक्रम रसधारा अपने आखिरी मोड़ पर। रसधारा में आज हम बात कर रहे थे स्तनपान और दुर्लभ बीमारियों से राहत की। स्तनपान केवल माँ की जिम्मेदारी मानकर न रह जाएं, ये जिम्मेदारी है पूरे परिवार की और साथ ही साथ समाज की। परिवार के सदस्य माँ को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त विश्राम और मानसिक सहयोग दें। कार्यस्थलों पर स्तनपान कक्ष, मातृत्व अवकाश तथा स्तनपान अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से भ्रांतियों को दूर कर वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। स्तनपान शिशु के जीवन की पहली और सबसे प्रभावी प्राकृतिक सुरक्षा है। यह न केवल सामान्य संक्रमणों से बचाता है बल्कि कई गंभीर और दुर्लभ बीमारियों की जटिलताओं को कम करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि प्रत्येक माँ जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करवा दे और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाए तो लाखों बच्चों का जीवन अधिक स्वस्थ और सुरक्षित बनाया जा सकता है। सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, परिवार और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही स्तनपान को जन आंदोलन का रूप देकर आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्वास्थ्य का उपहार दिया जा सकता है। आज के लिए कार्यक्रम बस इतना ही। आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त, अपनी होस्ट पूजा को कार्यक्रम रसधारा से। अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं।

0: मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाओं के दौरान भारत के प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय

मीडिया वेब 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल। साथ ही साथ शामिल कर आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचिता टाइप करके इस चैनल को बराह रास्त समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10:15:55 हो रहे हैं। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, जो वाबस्ता हुआ तुमसे वो अफसाने कहाँ जाते। जी हाँ सामिन कराम, हमारा दिल भी आपकी मोहब्बत के कई अफसानों से वाबस्ता है। यही वजह है कि रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ आज आपके खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त आफताब आलम। आप तमामी सामिन को आफताब आलम का पुरखलूस आदाब। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो आइए दोस्तों, आईने की इसी सदाकत के साथ रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की इब्तिदा करते हैं। सामिन कराम, आज जदीद हिंदी शायरी के अहम और बासर शायर मैथिली शरण गुप्त का यौमे वलादत है। इस मौके पर उन्हें हम खराज अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की वलादत 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के कुर्ब में वाका चिरगांव में हुई। उनके वालिद का नाम सेठ रामचरण गुप्त और वालिदा का नाम काशी बाई था। उनके खानदान का ताल्लुक गहवई बरादरी से था। उनका खानदान एक जमाने में काफी मकबूल और दौलतमंद खानदान था, लेकिन मैथिली शरण गुप्ता की वलादत के बाद इस खानदान की माली हालत अच्छी ना रही। सामिन कराम, मैथिली शरण गुप्त का असल नाम मैथिला धप नंदन शरण था, जो कि बाद में मैथिली शरण बन गया। उन्होंने बाकायदा स्कूली तालीम कम पाई, बल्कि घर पे ही उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली पढ़ाई गई। उनके उस्ताद का नाम पंडित महावीर प्रसाद दोवे वेदी था। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में शायरी करके इसे मकबूल किया। हालांकि इस जमाने में ज्यादातर शोरा ब्रिज भाषा में शायरी किया करते थे। उनकी शायरी के मौजूआत में कौम परस्ती, असातीरी कहानियां, अखलाकी अकदार और समाजी असलाहत वगैरह हैं। इनके आम तस्तानीफ में भारत भारती, साकेत, यशोधरा, रंग में भंग वगैरह काबिल जिक्र है। दोस्तों, इनमें भारत भारती आज़ादी की तहरीक के दौरान काफ़ी मकबूल हुई और इसी वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि का खिताब अता किया था। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त ने 17 से ज़ायद किताबें रकम की, जिनमें महाकाव्या, खंड काव्या, ड्रामे और तर्जमे भी शामिल हैं। सामिन कराम, मैथिली शरण गुप्त की गिनाकदर खिदमात अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें 1954 में पद्म भूषण जैसे एजाज से नवाजा गया और आजादी के बाद वो राज्यसभा के रुकन बनाए गए। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली को अदबी जबान की हैसियत अता की और कौम परस्ती के जज्बे को अपनी शायरी के जरिए आम किए। यही वजह है कि उन्हें जदीद हिंदी शायरी का संग बुनियाद तस्वूर किया जाता है। दोस्तों, इल्म अदब की इस मकबूल व मारूफ हस्ती ने 12 दिसंबर 1964 को 78 साल की उम्र में वफात पाई। सामिन कराम, अभी आप रोजाना उर्दू प्रोग्राम में आईना के रूबरू थे। दोस्तों, प्यार करने वाले के लिए उनका महबूब भी सब कुछ होता है। वो इसे पाने के खातिर हर दुख तकलीफ और रंज गम का मुकाबला कर लेती हैं और जब तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों का सामना करने के बाद उनका महबूब उन्हें हमेशा के लिए मैसर आ जाता है, तो उनके दिलों से बेसाख्ता यही आवाजें निकलती हैं।

उसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। सामिन कराम, तरबूज एक ऐसा फल है जो कि हमारी सेहत को मुख्तलिफ फायदों से मालामाल करता है। इसमें मौजूद लाइकोपेन और एस्ट्रोलिन खून की नालियों को लचकदार बनाते हैं, कोलेस्ट्रोल को काबू में रखते हैं और खून के दबाव को तवाजुन में रखने में मदद करते हैं। सामिन कराम, तरबूज में पानी की मकदार ज्यादा होने के बायस ये जिस्म को ठंडा रखता है, पानी की कमी दूर करता है, साथ ही साथ गर्मी के दिनों में हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। दोस्तों, तरबूज में मौजूद लाइकोपेन आजाद रेडिकल से लड़ता है जिसके सबब सेल्स किसी नुकसान से महफूज रहते हैं। इसके अलावा ये जिल्द आंखों की सेहत की हिफाजत करता है और मजमुई तौर पर सेहत के लिए नफा बख्श कारामद साबित होता है। सामिन कराम, तरबूज कम कैलोरीज वाला फल है और इसमें मौजूद ज्यादा पानी और फाइबर भूख को कम करते हैं जिससे वजन कम करने में काफी मदद मिलती है, बल्कि ये वजन कम करने वाले डाइट के बेहतरीन जूस हैं। इसमें पाए जाने वाला फाइबर हाजमे को बेहतर बनाता है, विटामिन ए और सी जिल्द की सेहत की हिफाजत करते हैं, साथ ही साथ जिल्द की नमी बरकरार रखते हैं और जिल्द को झुर्रियों से बचाते हैं। दोस्तों, कुछ तहकीकों से ये बात भी सामने आई है कि लाइकोपेन कैंसर के खतरे को कम करता है, आंखों की सेहत के लिए मुफीद होता है। ताहम इस दावे को अब तक हतमी हैसियत हासिल नहीं हुई है और अब भी पर इस पर तहकीक जारी है। दोस्तों, कुदरत की इस प्यारी तखलीक को ताज़ा खाया जाता है, जूस बनाकर पिया जाता है और सलाद में भी इसका मुस्तमिल होता है। दोस्तों, तरबूज के बीज भी गजाइयत से भरपूर होते हैं। डायबिटीज और गुर्दा के मरीजों के लिए इस्तेमाल के हवाले से माहिरीन सेहत का मशवरा लाजमी है। अलगरस साबिन कराम, तरबूज महज एक मज़ेदार फल ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों को तकालीफ से बचाने का कुदरत का बेहतरीन तोहफा भी है। ये गर्मियों में जिस्म को ठंडा रखने, जिस्म को हाइड्रेट करने, एंटी ऑक्सीडेंट्स फराहम करने और मजबूती सेहत को सहारा देने का बेहतरीन कुदरती जरिया है। इत्तेदाल के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में इसे शामिल करना नहायत ही नफा बख्श व कारामद साबित होता है। लेकिन सामिन कराम, इसे खाने से कबल माहिरीन सेहत का मशवरा नहायत मुफीद व कारामद साबित होगा।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। प्रस्तुत है दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा। कार्यक्रम सुरभि, जो सामान्य तौर पर दो भागों में विभाजित होता है, पहला भाग चर्चा है और दूसरा पहल। चर्चा है के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दोस्ती दिवस की, फ्रेंडशिप डे की, दोस्ती के अनमोल रिश्ते के उत्सव की।

मित्रता, विश्वास और आपसी सम्मान के रिश्ते को समर्पित एक विशेष दिन है मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे। उद्देश्य है लोगों के बीच प्रेम, सहयोग और भाईचारे की भावना को मजबूत करना। विश्व के अनेक देशों में यह अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, जबकि कुछ देशों में इसकी तिथि अलग अलग होती है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित किया, जबकि भारत सहित कई देशों में अगस्त महीने के पहले रविवार को मित्रता दिवस, फ्रेंडशिप डे, आज भी लोकप्रिय है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 1935 में अमेरिका में मानी जाती है। समय के साथ यह परंपरा दुनिया के कई देशों जैसे भारत, अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में लोकप्रिय हो गई। इस दिन लोग अपने मित्रों को फ्रेंडशिप बैंड, शुभकामना संदेश, कार्ड, फूल और छोटे छोटे उपहार देकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा लोग साथ मिलकर समय बिताकर पुराने रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। मित्रता वो संबंध है जिसे हम अर्जित करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय परंपरा की, तो हम कुछ रिश्तों को अपने साथ लेकर अस्तित्व में आते हैं, जिन्हें हम रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। लेकिन मित्रता का ये रिश्ता बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमारे किसी रक्त संबंधी के साथ ही हो। ऐसा भी नहीं कि इस रिश्ते को हम अपने रक्त संबंधियों के साथ कायम नहीं कर सकते। पूरी तरह से उन्मुक्त, आजाद रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता, मित्रता का रिश्ता। और अगर बात करें इस रिश्ते में अपनेपन की, तो कई भारतीय पौराणिक कथाओं की शुरुआत होती है कि वो इस तरह अपने मित्र के घर जाता है जैसे हिमालय बादलों को छू लेता है। बात करें अगर भारतीय परंपरा में मित्रता की, तो कृष्ण और सुदामा की मित्रता, ऐसी मित्रता जहां कृष्ण अपना सब कुछ सुदामा पर लुटा देने को तत्पर। कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता, जहां द्रौपदी जब असहाय हो गई, उन्हें कोई ना नजर आया, सारे रक्त संबंधों ने उनका साथ छोड़ दिया, तो उनका सखा उनके साथ खड़ा रहा। मित्रता का संबंध वह सहज और सरल संबंध है जो किसी भी औपचारिकता से परे है, और कह सकते हैं सबसे अधिक औपचारिक है, जो हमें सही और गलत की पहचान कराए। जो सही में भी हमारे साथ हो और गलत में भी हमारे साथ हो, वही हमारा मित्र है। सच्ची मित्रता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दुख सुख में साथ निभाने वाला मित्र जीवन को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है। फ्रेंडशिप डे हमें यह संदेश देता है कि रिश्तों को प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ निभाना ही सच्ची मित्रता की पहचान है। चर्चा है यहीं तक। चर्चा है कि अंतर्गत आज हम बात कर रहे थे मित्रता दिवस की, फ्रेंडशिप डे की। तो चलिए मित्रता को समर्पित किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में सुन लेते हैं इस गीत को, फिल्म शोले से। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और संगीत है आरडी बर्मन का। एक

कार्यक्रम सुरभि की अगली कड़ी पहल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस की। क्लोव्स CLOVES दुर्लभ बीमारी की पहचान और समय पर उपचार का संदेश देता है आज का दिन। अत्यंत दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना, समय पर पहचान को प्रोत्साहित करना तथा प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों को सहयोग प्रदान करना। हर वर्ष 3 अगस्त को मनाए जाने वाले इस दिन की उद्देश्यों में ये सभी

बातें शामिल होती हैं। इस अवसर पर दुनिया भर में स्वास्थ्य संस्थाएं, रोगी सहायता समूह और चिकित्सा विशेषज्ञ इस दुर्लभ बीमारी के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। अंग्रेजी के 5 शब्दों का संक्षिप्त रूप है क्लोव्स। कंजेनिटल लिपोमैटस ओवरग्रोथ, वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन, एपिडर्मल नेवाइल एंड स्केलेट स्पाइन एनोमलीज। बेहद कठिन है ये चिकित्सकीय शब्द और आम जनमानस के लिए समझ पाना भी कठिन कार्य है। तो अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो यह एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों में असामान्य रूप से ऊतकों और वसा की वृद्धि होने लगती है, टिश्यूज और फैट बढ़ने लगते हैं। इसके साथ रक्त वाहिकाओं की विकृतियां, त्वचा पर जन्म चिन्ह तथा हड्डियों और रीढ़ की असामान्यताएं भी देखी जा सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी मुख्य रूप से जीन में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। यह परिवर्तन अधिकांश मामलों में जन्म के बाद भ्रूण में विकास के दौरान स्वतः होता है और सामान्यतः माता पिता से आनुवांशिक रूप से नहीं मिलता। क्लोव सिंड्रोम के प्रमुख लक्षणों में शरीर के किसी हिस्से का असामान्य रूप से बड़ा होना, त्वचा पर विशेष प्रकार के धब्बे, रक्त वाहिकाओं की विकृतियां, हाथ पैरों की असमान वृद्धि, रीढ़ की समस्याएं, चलने फिरने में कठिनाई शामिल हो सकती है। कुछ रोगियों में बार बार संक्रमण, रक्त के थक्के बनने या अन्य जटिलताओं का खतरा भी बढ़ जाता है। चूंकि यह एक दुर्लभ बीमारी है इसलिए कई बार इसकी पहचान होने में भी काफी देर हो जाती है। हालांकि वर्तमान समय में इस सिंड्रोम का पूर्ण उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय पर निदान और विशेषज्ञों की देखरेख में उपचार से रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार किया जा सकता है। उपचार में दवाएं, फिजियोथेरेपी, दर्द प्रबंधन, आवश्यकता पड़ने पर सर्जरी और विभिन्न विशेषज्ञों जैसे बाल रोग विशेषज्ञ, अनुवांशिकी विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन और वैस्कुलर विशेषज्ञ की संयुक्त देखभाल शामिल हो सकती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज, वर्ष 2021 के माध्यम से दुर्लभ रोगों की शीघ्र पहचान, उपचार और आर्थिक सहायता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देश के कई प्रमुख चिकित्सा संस्थानों को दुर्लभ रोगों के उत्कृष्टता के रूप में विकसित किया गया है, जहां विशेषज्ञ उपचार और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस हमें यह संदेश देता है कि किसी भी दुर्लभ बीमारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर पहचान, सही चिकित्सा, सामाजिक सहयोग और निरंतर शोध के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों को बेहतर जीवन प्रदान किया जा सकता है। जागरूकता ही इस दिशा में सबसे प्रभावी कदम है, क्योंकि सही जानकारी ही समय पर उपचार और बेहतर भविष्य की कुंजी है। पहल में आज हम बात कर रहे थे क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस की। कार्यक्रम सुरभि, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। दीजिए आज्ञा अपने दोस्त, अपनी होस्ट पूजा को आज के इस अंक से। चलते चलते छोड़े चलूंगी आपको पापोन की आवाज के साथ अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे

0: चलेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक में आज शाम लोकभवन में 20 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। डीके शिवकुमार ने 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। आज 20 मंत्रियों के शामिल होने पर मंत्रिमंडल की अधिकतम क्षमता 34 हो जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognized center in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. The presiding officer urged the members to go back to their seats. As the pandemonium continued, the Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
3: India secured an impressive 4th position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance.

going out.

0: harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And weather department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में सम्पन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे।

0: और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़

0: छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धान और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कु कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्योहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: शक्ति सिंह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर, छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल प्रारंभ किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:21 आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल।

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो चला है उसका ये इशारा है कि अब शुरू कर दिया जाए आज का ये कार्यक्रम। आपको बता दें सबसे पहले कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कौन सा सेगमेंट लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज है सोमवार की शाम और आज उर्वशी के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आते हैं झरोखा। झरोखे के अंतर्गत हम किसी विशेष विषय पर बातें करते हैं और आज भी जो विषय है वो है बेहद विशेष। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, लेकर कार्यक्रम जिसका नाम है उर्वशी। और उर्वशी के अंतर्गत आज झरोखा में हम बात करेंगे एक विशेष प्रकार के लोक संगीत की, जो कि यूपी बिहार से जुड़ा हुआ है। लेकिन कौन सा है ये संगीत, इसके विषय में जानने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं एक गीत सुना दूं। दोस्तों, वैसे तो ये जो गीत है, इन गीतों को कई बार बॉलीवुड में यूज भी किया जाता है। इन संगीतों को, इन धुनों को बॉलीवुड में यूज भी किया जाता है, लेकिन बहुत सारी फिल्म्स ऐसी भी होती हैं जिनमें उस थीम पर तो बनती हैं लेकिन उन संगीत को यूज नहीं किया जाता। तो आपको बता दें कि मिक्स तो होंगे आज के कार्यक्रम में जो गीत हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो गीत आप सुनेंगे ये है फिल्म क्या कहना से टाइटल ट्रैक। आइए सुनते हैं इस गीत को और उसके बाद हम बातें करेंगे आज के विशेष दिन बात होने वाली है किस संगीत की।

दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे इस गीत को फिल्म क्या कहना से, और इस गीत में जो आवाज थी वो थी हरिहरन के साथ कविता कृष्णमूर्ति की। और 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। दोस्तों भारतीय संस्कृति और विरासत जो है ये इतनी विशाल है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें समाहित हैं जिन्हें हम कई बार अपने आसपास देखते हैं। चूंकि हमें नॉलेज कम होता है तो कई बार उसके विषय में हमारी जानकारी नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आंखों के सामने है, और बहुत ही समृद्ध संस्कृति है हमारे देश की। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम बातें करने जा रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी के झरोखा के अंतर्गत सोहर की। भारतीय संस्कृति विरासत जितनी विशाल है उतनी ही मधुर और जीवंत भी है। यहाँ जीवन के हर पड़ाव, चाहे वो जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे त्योहार हो, चाहे खेती हो, या फिर ऋतुओं के बदलने का समय हो, हर चीज जुड़ी है लोक गीतों से। और इन्हीं लोक गीतों में से एक बहुत ही ज्यादा मधुर जो भावपूर्ण परंपरा रही है वो है सोहर की। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम

कार्यक्रम में हम सोहर की बातें करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोक गीतों में से एक है और इनके इतिहास, महत्व और संस्कृति के बारे में आज के कार्यक्रम में बातें होंगी। दोस्तों, आज के समय में हमारे समाज में हम जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो संगीत भी इससे जुड़ा है। सोहर जन्मोत्सव को के समय का लोक गीत है। जब घर में कोई नया मेहमान आता है, जब घर में एक नन्ही परी या नन्हा सा राजकुमार आता है, तो ऐसे में ये जन्मोत्सव और भी ज्यादा मधुर हो जाता है सोहर के साथ। दोस्तों, घर में जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तब परिवार और पड़ोस की महिलाएं आपस में मिलकर इस गीत को गाती हैं और साथ ही मंगल कामनाएं और खुशियों को अपनी सामने प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि सोहर एक ऐसा लोक गीत है जो कि घर में आए हुए नवजात शिशु की मंगल कामना के लिए और उसकी खुशी के लिए गाया जाता है। दोस्तों, इस गीत के साथ परिवार में नए जीवन का आगमन जो हो रहा है उसका उत्सव मनाया जाता है। इसमें परिवार की खुशियां, आशीर्वाद, लोगों के विश्वास और साथ ही भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। दोस्तों, सोहर की परंपरा जो है वो काफी पुरानी है। हम जब भी बातें करते हैं भारतीय संस्कृति की तो हमारी संस्कृति बेहद प्राचीन होने के साथ साथ बेहद प्रासंगिक भी है। हर समय ये प्रासंगिक बनी रहती है क्योंकि ये अपने आप में बेहद रिच यानी कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि पहले जब अस्पतालों में जब प्रसव कम होते थे, अधिकतर बच्चों का जन्म घर में ही होता था और जैसे ही शिशु का जन्म समाचार मिलता था तो पूरे परिवार में उत्सव जैसा वातावरण हो जाता था। महिलाएं ढोलक, मंजीरा, ताली के साथ साथ ताल पर अपने सोहर गीतों को गाती थीं। इन गीतों से भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, माता सीता और यशोदा का स्मरण भी किया जाता था और नवजात शिशु के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की जाती थी। दोस्तों, सोहर के इतिहास को हम और भी करीब से जानेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी के लिए पेश है एक ऐसा गीत जो लता मंगेशकर की आवाज में है और जिसमें घर में नवजात शिशु के आगमन पर एक माँ क्या गाती है वो कह रही है। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचिता चैनल।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय 5:37 और आज हम बातें कर रही हैं उर्वशी के झरोखा में सोहर की। और दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ा है सोहर संगीत और इसके विषय में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो संगीत है उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है और बिहार से भी। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल यानी कि अवध और पूर्वांचल के साथ साथ अवध और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें सोहर की समृद्ध परंपरा हमें देखने को मिलती है। यहाँ के सोहरों में भगवान राम के जन्म, अयोध्या की खुशियों और माता कौशल्या की ममता का सुंदर वर्णन सुनने को मिलता है और कहीं कहीं पर कृष्ण के जन्म की झांकी भी देखने को मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि भाषा में अवधी, भोजपुरी और पूर्वी हिंदी की मिठास सुनाई देती है। साथ ही इन गीतों में हास्य, स्नेह, आशीर्वाद और साथ ही पारिवारिक प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो सोहर संगीत है ये घर में जब हमारे नया मेहमान आता है, कोई नया मेंबर जो शख्स है वो जब आता है तब इसे गाया जाता है, छोटे से मेहमान के स्वागत और उसकी मंगल कामना के लिए। दोस्तों फिलहाल आप सभी के लिए पेश है जब घर में नन्ही परी आती है तो लता मंगेशकर क्या गाती हैं, क्या कहती हैं, ये कुछ शब्द आप सुनेंगे। लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है कभी कभी, और आइए सुनते हैं मेरे घर आई एक नन्ही परी।

दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोहर के विषय में तो बातें हो गई, लेकिन बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में विशेष रूप से भोजपुरी, मैथिली और मगही के साथ साथ बज्जिका भाषाओं में भी सोहर गीत गाए जाते हैं। और बिहार के सोहरों में लोक जीवन की सादगी, पारिवारिक रिश्तों की आत्मीयता और धार्मिक आस्था का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। गीतों में दादी, नानी, बुआ, चाची, मामा और पूरे परिवार का स्नेह देखने को मिलता है। और साथ ही आपको ये बताएं दोस्तों कि कई सोहरों में मिथिला की सांस्कृतिक परंपराएं भी देखने को मिलती हैं। सोहर का सांस्कृतिक महत्व, सोहर केवल के विषय में अगर बात की जाए तो ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये परिवारों को जोड़ता है, नई पीढ़ी को संस्कृति से परिचित कराता है और महिलाओं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर भी देता है। नवजात शिशु को आशीर्वाद देने की परंपरा को आगे बढ़ाना भी इसी गीत का एक उद्देश्य है। और इन गीतों के माध्यम से लोक जीवन की परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहती हैं। सोहर संगीत जो है इसमें बहुत ही सरल और मधुर रूप में इसे गाया जाता है। और मुख्य वाद्य यंत्रों की अगर बात की जाए तो ढोलक, मंजीरा, झांझ, ताली आदि के साथ इस गीत को धुन में पिरोया जाता है। दोस्तों, आइए सुनते हैं एक और गीत, और इस गीत के उस पार और भी कुछ बातें होंगी सोहर से जुड़ी हुई। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का ये अगला तराना।

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय हो चला है 5:43 और 46 सेकंड और आप सुनेंगे अलका याग्निक की आवाज में ये अगला गीत।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:48:52, यानी आपसे कुछ ही देर में हम आपसे लेंगे विदा। और आज हम बातें कर रहे थे यूपी और बिहार दोनों राज्यों से जुड़ी एक ऐसी लोक संगीत के बारे में जो कि नवजात शिशु के आगमन पर गाया जाता है, यानी सोहर के विषय में। दोस्तों ये सोहर जो है

बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, हमारी संस्कृति का एक बहुत ही खास हिस्सा है, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं बांध कर रखा है हमारी संस्कृति को। तो दोस्तों फिलहाल सोहर के विषय में बातें करते करते आज अंतिम गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है फिल्म कुंवारा बाप से मोहम्मद रफ़ी के साथ महमूद के आवाज़ में आप सुनेंगे ये गीत। और ये जो गीत है, इस गीत में सोहर की झलक आपको सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं इस गीत को और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाज़त। फिर होगी आपसे मुलाकात।

0: हाय हाय हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए, बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूं, मंदिर में रख।

0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:10 और 58 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं।

दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम यानी वार्ता के अंतर्गत हम जिस विशेष विषय पर आज बातें करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बता दूं, आज हम बातें करेंगे दुर्लभ बीमारियों की, उनके प्रति जागरूकता और पहचान के साथ साथ उपचार की भी। तो दोस्तों, वार्ता के अंतर्गत आप सुनेंगे दुर्लभ बीमारियां, जागरूकता, पहचान और उपचार। दोस्तों, आपको बताएं कि दुर्लभ बीमारियां, जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि रेयर डिजीज, जिनकी ऐसी बीमारियां जो बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं, लेकिन कम का अर्थ ये नहीं कि ये महत्वहीन होती हैं। दोस्तों, दुनिया भर में लगभग 7000 से अधिक दुर्लभ बीमारियां पहचानी जा चुकी हैं और करोड़ों लोग किसी न किसी दुर्लभ बीमारी से प्रभावित होते हैं। इनमें से लगभग 70% बीमारियां बचपन में ही दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो अनुवांशिक भी होती हैं और साथ ही साथ जेनेटिक कारणों से ये बीमारियां बच्चों में दिख जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें इन बीमारियों के विषय में कि कौन कौन सी प्रमुख दुर्लभ बीमारियां हैं। तो दोस्तों, हीमोफीलिया, ड्यूशन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रॉफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया के कुछ जो रोग होते हैं, थैलेसीमिया तो वैसे तो बहुत लोगों को होता है आजकल, लेकिन फिर भी थैलेसीमिया के कुछ रूप जो हैं, ये दुर्लभ बीमारियों के अंतर्गत माने जाते हैं। दोस्तों, इन बीमारियों के नाम भले ही हमने ना सुने हो, लेकिन इनके पीछे का संघर्ष कर रहे जो लोग हैं, उनके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि उनकी कहानी हमारे मन को भिगोने के योग्य होती है और हमें बनाती है संवेदनशील। दोस्तों, आपको बताएं कि दुर्लभ बीमारियों की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि समय पर अगर हम इसे पहचान लेते हैं, तब तो इसे हम इसके विषय में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। कई बार मरीजों को वर्षों तक अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और लक्षण सामान्य बीमारियों जैसे लगते हैं, इसलिए सही बीमारी का पता लगाने में बहुत समय लग जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि किसी बच्चे का विकास सामान्य से धीमा हो, बार बार संक्रमण हो, मांसपेशियां कमजोर हों, चलने फिरने में कठिनाई हो, या फिर परिवार में पहले भी ऐसी बीमारी रही हो, तो विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि आपको इन सब चीजों को ध्यान से, बारीकी से जानना और सही डॉक्टर के पास पहुंचकर

ही बीमारियों को पहचानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। विशेषज्ञ सलाह दें तो आप उस हिसाब से अपनी जो भी परिवार में जो ग्रस्त हैं व्यक्ति हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। दोस्तों आपको बताएं कि जागरूकता जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूकता ही बचाव और समय पर उपचार की पहली सीढ़ी भी होती है। यदि माता पिता, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और समाज में आसपास जो भी लोग हैं, जो परिचित लोग हैं, उन्हें शुरुआती संकेतों में पहचान लें तो मरीज को कम समय पर सही इलाज मिल सकता है। बीमारी की पहचान जल्दी ही होती हो जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका सही उपचार भी किया जाए, गलत इलाज से बचा जाए, मरीज और उसके परिवार को उचित सलाह और सहायता भी मिलनी चाहिए। दोस्तों समाज में भेदभाव और गलत धारणाएं भी होती हैं और इस वजह से सही उपचार होना और बीमारियों के विषय में सही रूप में पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों ये बात भी सच है कि कई दुर्लभ बीमारियां ऐसी हैं जिनका पूर्ण रूप से इलाज या उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान लगातार प्रगति कर रहा है और आज कई बीमारियां ऐसी हैं जिनकी पहले दवाइयां या फिर उपचार उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज उनके उपचार और दवाइयां दोनों ही उपलब्ध हैं। दोस्तों कुछ मामलों में सही समय पर इलाज शुरू करने से मरीज जो होता है उसे सामान्य जीवन जीने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। भारत सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार और सहायता के लिए राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज भी लागू की है। इस नीति का उद्देश्य है समय पर बीमारी की पहचान, बेहतर उपचार सुविधाएँ प्रदान करना, साथ ही विशेष चिकित्सा केंद्र का विकास करना, आर्थिक सहायता पहुंचाना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और देश के कई प्रमुख अस्पतालों में दुर्लभ रोगों के लिए विशेष केंद्र स्थापित भी किए जा रहे हैं। दोस्तों दुर्लभ बीमारियों से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो ये सिर्फ मरीज के परिवार वालों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हमें उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, रक्तदान और अंगदान जैसे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए, वैज्ञानिक सोच अपनाना चाहिए, अफवाहों और अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए और परिवार की भूमिका भी बेहद अहम होती है, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना मरीज के लिए सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है इन बीमारियों का सामना करना। यदि परिवार साथ हो तो इन बीमारियों से लड़ने के लिए मरीज को बड़ी ताकत मिलती है। धैर्य, प्रेम और सकारात्मक वातावरण मरीज को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। कई बीमारियों से ज्यादा कठिन होता है समाज का व्यवहार भी। कई बार हम कहते हैं ना, किसी बीमार व्यक्ति को यदि हम दो मीठे बोल कह दें या फिर उसके प्रति अपनी सहानुभूति की भावना प्रकट कर दें तो इससे ही उसका मनोबल बढ़ जाता है। भले ही उसकी बीमारी ना ठीक हो पाए हमारी बातों से, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये विश्वास जागता है कि ये व्यक्ति हमारे साथ है। दोस्तों हर व्यक्ति प्रेम डिजर्व करता है, हर व्यक्ति प्यार को पाना डिजर्व करता है और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित है या फिर ऐसी कोई बीमारी उसे हो गई है जिसकी वजह से समाज तो दूर की बात, लोग अपने ही लोग उससे मुंह फेर लेते हैं, तो ऐसे में यदि उसे परिवार या फिर अपनों का प्रेम मिले या फिर कोई भी व्यक्ति उसे प्रेम से बातें भी कर ले तो वो कहीं ना कहीं मनोबल पाता है अपनी इस कठिन परिस्थिति से लड़ने की। तो दोस्तों ऐसे में हमें उन लोगों का साथी बनना चाहिए, सहायक बनना चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं मनोबल पाएं अपने जीवन में आगे बढ़ने की और अपनी बीमारी से लड़ने की। दोस्तों आज की वार्ता में बस इतना ही। चलते चलते फिलहाल आपको बता दें कि ठीक 6:10 आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय हो चला है 6:19:35। 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में।

दोस्तों अलीशा चिनॉय के आवाज के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और आपको बता दें स्टूडियो के घड़ी में समय हो चला है 6:35 और 10 सेकंड। और आप सभी को बता दें कि शुरू हो चुका है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम यानी कि गुलगुलशन। और आप सभी के लिए सबसे पहला तराना अलीशा चिनॉय की आवाज में और अगला तराना ये पेश है।

सोनू निगम की आवाज में आप सुन रहे थे बेहद ही प्यारा सा रोमांटिक सा तराना। और दोस्तों अगली जो आवाज है वो है जगजीत सिंह की, जो पूछती है हमसे कि प्यार मुझसे किया तो फिर क्या पाओगे।

दोस्तों आइए चलते चलते सुनते हैं आज के कार्यक्रम की अंतिम गजल, और ये गजल आप सुनेंगे लता मंगेशकर के साथ आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज में।

0: हैदराबादी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भिखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। स्टूडियो की घड़ी में समय 7:30:54। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण, जिसे लेकर मैं हाजिर हूँ देविका। और दोस्तों आपको बता दूं कि दर्पण में सबसे पहले आप सभी के लिए प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा सेगमेंट यानी कि एक नजर। दोस्तों एक नज़र के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर बातें करेंगे वो बहुत ही खासम खास विषय है, क्योंकि 1 से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में ये मनाया जाता है विश्व स्तन पान सप्ताह, और इसी विषय पर आज होंगी बातें। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल एक बच्चे के स्वास्थ्य भविष्य के नींव रखता है, बल्कि एक माँ के स्वास्थ्य और पूरे समाज के विकास से भी जुड़ा होता है। ये विषय है स्तन पान सप्ताह। हर वर्ष 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे विश्व में से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना होता है और माताओं को स्तनपान के लिए प्रोत्साहित करना। माँ का दूध शिशु के लिए प्रकृति का सबसे अमूल्य उपहार होता है, और जन्म के बाद से शुरुआती दिनों में ये जो समय है, इस समय बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्तनपान कराना, क्योंकि इस समय कोलोस्ट्रम जो एकदम पीला गाढ़ा दूध होता है ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये बच्चे की पहली प्राकृतिक सुरक्षा होती है और इसमें आवश्यक पोषक तत्व और अन्य रोगों से लड़ने वाली प्रतिरक्षा शक्ति भी भरपूर होती है। दोस्तों विशेषज्ञों की अगर माने तो जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर यदि बच्चे को स्तनपान कराना शुरू करवा दिया जाए तो जन्म से लेकर पहले 6 महीने तक भी अगर स्तनपान कराया जाए तो इस दौरान बच्चे पानी, शहद या अन्य कोई खाद्य पदार्थ की आवश्यकता उन्हें पड़ती ही नहीं है। बिना मतलब किसी और चीज़ के बच्चे करते हैं सर्वाइव, क्योंकि उनके लिए माँ का दूध ही होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझते हुए हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम अपने आसपास जो है इस विषय के प्रति जागरूक बनाएं लोगों को। दोस्तों साथ ही आज बात करेंगे दुर्लभ बीमारियों की, क्योंकि दुर्लभ बीमारियां जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये बीमारियां जो हैं बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं, लेकिन कम होने के बावजूद भी ये बीमारियां होती हैं रेयर, इसीलिए कहा जाता है इन्हें रेयर डिजीज़ या दुर्लभ बीमारियां। दोस्तों करोड़ों लोग इससे प्रभावित होते हैं और साथ ही कुछ लोग तो बचपन में इसके विषय में जान जाते हैं और कई लोगों को जानने में सालों साल लग जाते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की दुर्लभ बीमारी या रेयर डिजीज है। तो दोस्तों ऐसे में दुर्लभ बीमारियों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए ताकि हम किसी भी प्रकार की दुर्लभ बीमारी अगर हमारे आसपास किसी व्यक्ति को है तो उसे सुरक्षा प्रदान कर सकें, या फिर उसके सही उपचार में अपना योगदान या फिर सही उपचार के लिए जो कुछ भी बन पड़े वो कर सकें। दोस्तों आज आप सुन रहे हैं अभी स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप सुन रहे थे एक नज़र। एक नज़र के अंतर्गत आज यानी सोमवार की शाम हम आपके लिए एक नज़र के अलावा एक और सेगमेंट लेके आते हैं जिसका नाम है साहित्य सरिता। और आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जहाँ साहित्य सरिता के अंतर्गत किस विषय पर होंगी बातें ये ज़रूर आपको बताऊँगी, लेकिन पहले पेश है आज के कार्यक्रम का ये तराना।

दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे ये गीत सोनू निगम के साथ श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और आपको बता दें फिल्म दबंग से था ये गीत। और आज के इस सेगमेंट यानी कि आप सभी के प्रिय कार्यक्रम दर्पण में अगले सेगमेंट सोमवार के सेगमेंट साहित्य सरिता में आज हम बातें करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के उस महान कवि के विषय में जिन्होंने अपनी लेखनी से राष्ट्रभक्ति, भारतीय संस्कृति, नारी सम्मान और मानवीय मूल्यों का ऐसा संदेश दिया कि उन्हें पूरे देश ने राष्ट्रकवि के उपाधि से सम्मानित किया। मैं बात कर रही हूँ कवि

मुरली शरण गुप्त की। उनकी कविता केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि राष्ट्र को जागृत करने का एक सशक्त माध्यम थी। उन्होंने हिंदी में खड़ी बोली को साहित्यिक गरिमा प्रदान की और उसे जन जन की भाषा बनाया। प्रारंभिक जीवन के विषय में अगर बात की जाए तो उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव में हुआ था। तो दोस्तों, आज यानी 3 अगस्त 2026 के दिन हम बातें कर रहे हैं उसी कवि के विषय में जिन्होंने आज ही के दिन लिया था जन्म 1886 में। दोस्तों, उनके पिता के विषय में अगर बात की जाए तो उनके पिता का नाम था रामचरण गुप्त, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति थे और खुद भी कविताएं लिखते थे। उनकी माता काशीबाई बहुत ही संस्कारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। परिवार के विषय में अगर बात की जाए तो परिवार में साहित्य, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावना भरी हुई थी, जिसका गहरा प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पर पड़ा। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा कम प्राप्त की, लेकिन घर पर ही संस्कृत, हिंदी और बंगला तीनों भाषाओं का अध्ययन किया। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने और कविता लिखने का काफी शौक था। साहित्यिक जीवन की अगर बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक जीवन को नई दिशा देने का पूर्ण श्रेय हिंदी जगत के महान साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी रचनाओं को प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित किया और यहीं से उनकी प्रतिभा पूरे देश में सामने आने लगी और उनकी हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का प्रभुत्व था। लेकिन गुप्त जो थे, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जो थे, वे खड़ी बोली हिंदी में उत्कृष्ट काव्य लिखकर उसे नई प्रतिष्ठा दिलाने लगे। तो दोस्तों, आज हम बातें करने जा रहे हैं महान कवि, या यूं कहें हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के साहित्य के विषय में।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:45:45। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जहां पर हम बातें कर रहे हैं दैनिक हिंदी पत्र का कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत सोमवार के सेगमेंट यानी कि आप सभी के प्रिय सेगमेंट साहित्य सरिता की। तो दोस्तों आज साहित्य सरिता के अंतर्गत बातें हो रही है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की। दोस्तों उनके राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त करने के विषय में अगर बात की जाए तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनकी कविताएं लोगों में देशभक्ति की भावना जगाती थी और उनकी जो रचनाएं थी वो युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरणा भी देती थी और यही वजह रही कि उन्हें राष्ट्रकवि कहा जाने लगा और उनकी कविताओं में भारत की संस्कृति, इतिहास, धर्म, त्याग और साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना की अद्भुत समन्वय को देखा गया और इसी समन्वय के विषय में ध्यान रखते हुए उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि मिली। दोस्तों कवि मैथिली शरण गुप्त के अमर काव्य के विषय में या फिर यूं कह सकते हैं उनकी प्रमुख कृतियों के विषय में अगर बात की जाए तो उनकी प्रमुख रचनाओं में भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, साथ ही पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, झंकार, रंग में भंग, ये सभी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहीं। इनमें से भारत भारती, साकेत और यशोधरा विशेष रूप से प्रसिद्ध रहीं। अगर बात की जाए भारत भारती की तो सन 1912 में प्रकाशित भारत भारती उनका सर्वप्रसिद्ध काव्य रहा। इस काव्य के विषय में अगर बात की जाए तो इस काव्य में भारत के गौरवशाली अतीत, वर्तमान और चुनौतियों को उन्होंने दर्शाया था, साथ ही उज्जवल भविष्य की कल्पना भी इसमें देखने को मिली थी। साथ ही आपको ये बता दें कि ये काव्य स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। इसमें उन्होंने भारतीयों से आत्मगौरव, एकता और साथ ही राष्ट्र सेवा का आह्वान भी किया। साकेत के विषय में अगर बात की जाए तो साकेत मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और ये रामायण पर आधारित है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि इसमें उर्मिला के त्याग, धैर्य और बलिदान को केंद्र में रखा गया है। जहाँ अधिकांश ग्रंथों में उर्मिला का उल्लेख बहुत कम मिलता है, वहीं मैथिली शरण गुप्त ने उनके चरित्र को नई पहचान दी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि इतिहास केवल युद्ध लड़ने वालों का नहीं बल्कि मौन त्याग करने वालों का भी होता है। यशोधरा की अगर बात की जाए तो ये काव्य भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन पर आधारित है और सिद्धार्थ जब यशोधरा को ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़कर जाते हैं तब यशोधरा के मन में उठने वाले प्रश्न, उनकी पीड़ा, उनका त्याग, ये सब कुछ मार्मिक रूप में चित्रित है मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा में। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में नारी के सम्मान को मुख्य रूप में देखा गया। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियों की बात की जाए तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इन पंक्तियों को सुनते ही आंखें तो नम होती ही हैं। हृदय में महिलाओं, नारी के प्रति जो सम्मान की भावना जागती है, जो भावनाएं उद्वेलित होती हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों इन पंक्तियों में कवि ने समाज की उन महिलाओं की स्थिति पर गहरा चिंतन प्रस्तुत किया है जो अपने कई सारी जो अधिकार हैं उनसे वंचित रहती हैं और उन्हें वे कमजोर नहीं बताना चाहते हैं बल्कि वे उनकी पीड़ा का एहसास दिलाना चाहते हैं। बात अगर राष्ट्रभक्ति की हो तो मैथिली शरण गुप्त का मानना था कि देशभक्ति केवल युद्ध लड़ने से नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने से भी हो सकती है। उनकी कविताएं हमें सिखाती हैं कि राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली रही, साथ ही संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली

ही उनकी भाषा में रचना में देखने को मिला और उन्होंने पूरे देश को बहुत ज्यादा प्रेरित किया ताकि हम सभी गर्व कर सकें भारतीय होने पर। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी जैसे चरित्र को भी साकेत महाकाव्य में एक ऐसा स्थान दिया जिसमें कैकेयी के प्रति भी हमारे दिल में भावनाएं जागने लगती हैं। कैकेयी का अनुताप नामक उनकी जो कविता है उस कविता के माध्यम से राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उन्हें भी शत शत नमन किया। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 12 दिसंबर 1964 में महान साहित्यकार की विदा लेने का समय आया और ऐसे में हम सभी की आंखें हो गई नम। दोस्तों आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का अगला तराना।

स्टूडियो की घड़ी में जो समय हो चला है दोस्तों, आपको बता दें कि वो इशारा कर रहा है कि आपसे लेना है मुझे विदा। और फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत। सुनते सुनते दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट देविका को इजाजत।

0: শুনলেন নানা রঙের গান, এখন সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে জাগৃতি শর্মা। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के

0: वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भिखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है।

0: पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
4: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों

0: में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister DK Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Femme in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court number of judges amendment bill.

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगाकर आता है।
0: जी,
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज़ होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
0: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
1: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन ये है कि आज हमारा जो ना COVID-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें COVID-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
0: जी।
1: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
1: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है, तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो, अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930
0: जी,
1: 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहां कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
0: जी।
1: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब यह कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
0: जी।
1: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपके

0: रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930-1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में है, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं और मोर इम्पोर्टेंट सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से।
1: जी
2: सर, मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है?
0: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
0: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब FD 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं है, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज्ड बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए करीबन 12,300, तो भैया
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12%
1: इंटरेस्ट।
0: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
3: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी सवाल पूछिए।
3: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है?
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत,

0: शक्की हो जाइए। दूसरी आदत कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक के दृष्टिकोण से देखें, जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की। चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशन होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है, आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच है जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से अमित उपाध्याय। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार विशेषज्ञ, जो भी हमारा टीम है, मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में उसको सर्कुलेट करके बना दिया है, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, इसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी, कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है जी। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी। तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हो। इसके अलावा सावधानी, सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
3: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
3: और सर, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट के अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से, या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं ना रोक टोक की, तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि सर किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग, ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये?
0: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका।

0: आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है। इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब वो एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी, थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी। बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी इसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज्यादा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
0: जी,
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
2: नमस्कार
1: जी।
0: जी नमस्कार,
2: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवाड़, तहसील जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी,
2: मेरा बटन का फोन है।
1: वेरी गुड।
2: अरे बटन के फोन में तो धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकते।
1: बिल्कुल,
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे की चीप फ्लाइट्स ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तब वो फीचर फोन होता है। फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है।
1: ठीक,
0: कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत

0: cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला बैंक जाते
1: बैंक में जाना चाहिए।
0: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट जब आपको पता लगता है कि आप क्या फ्रॉड हुआ है, अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
2: जी मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी
2: मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं,
1: जी
2: यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिला हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक तो जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है, अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है ये इंटरमीजरीज हैं, उनका दायित्व बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है, यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजेक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
3: जी जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं, अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी सवाल पूछिए।
3: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
3: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें, अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना क्या करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि ये आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन

0: के साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फोन चुराते हैं, फिर आपकी नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंट में जाने हैं, आपके फोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है। एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना, ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66B भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफकोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना जरूरी है, और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी, क्या सवाल है आपका?
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला
1: जी।
2: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी ओटीपी सीवीवी पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का, जिन हमसे आज जुड़े हैं, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर की कोशिशों से हुई बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित बड़े हमले को रोक दिया है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इस दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं हो रही है और न ही कोई बैठक तय है। उन्होंने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को छोड़कर बाकी सभी वार्ताकार ईरान में हैं। बघाई के अनुसार इस समय केवल ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी है। दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: रोम स्थित रूस के दूतावास ने मॉस्को के एक रेस्तरां में हुए बम विस्फोट के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। दूतावास ने इसे रूस में रह रहे इतालवी समुदाय को डराने का प्रयास बताया। दूतावास के अनुसार शनिवार रात हुए इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इस घटना को क्रूर आतंकवादी हमला बताया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस आरोप पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों में सैन्य, ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर व्यापक ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना ने एंगल स्थित उस सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया जहां रूस के लंबी दूरी के बम वर्षक विमान तैनात हैं। इसके अलावा सारातोव के एक तेल शोधक संयंत्र पर भी हमला किया गया। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस के पश्चिमी कलुगा क्षेत्र में तेल डिपो पर हमला किया जिससे वहां आग लग गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वास्तुकला, भाषा, भोजन, संगीत और धार्मिक परंपराओं में साझा विरासत ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया है। दोनों देशों के हजारों अधिकारी, पेशेवर और छात्र एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव के साथ बैठक के दौरान अपने संबोधन में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन सहित कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान सरकार और जनता द्वारा आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए उठाए गए दृढ़ रुख की सराहना करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग एवं व्यापार मंत्री लजीज कुद्रतोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, संपर्क, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक आज लखनऊ में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित

0: बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के साथ नीति निर्माता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद और अन्य क्षेत्र के लोग शामिल हुए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। तन्वी ने कल ही समाप्त हुए ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। एक रिपोर्ट।
1: ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनके अलावा अनमोल खरब, मालविका बंसोड, इश्रानी बरुआ, श्रेयांशी वली शेट्टी, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिहा, तान्या हेमंत, आकर्षी कश्यप और मानसी सिंह भी महिला सिंगल्स दल का हिस्सा है। वही पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, थारून मन्नेपल्ली, मिथुन मंजुनाथ, रौनक चौहान और सनी दयानंद पर नजरें होंगी, जबकि एस शंकर सुब्रमण्यन और तुषार सुवीर क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ की राह तलाशेंगे। भारत ने पुरुष डबल्स में 3 और महिला डबल्स में 2 जोड़ियों को उतारा है, जबकि मिक्स डबल्स में भारत की 3 जोड़ियां मैदान में हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं दिव्या तोमर।
0: युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। उनकी नज़र 2026 एशियाई खेलों में शीर्ष 10 में जगह पक्की करने और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर होगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को गलत बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फिर गोलीबारी की। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्धारित वार्ता के दावे के विपरीत अमेरिका के साथ जारी किसी भी वार्ता से इनकार किया। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: These are definitely valuable qualities, but independence does not mean emotional isolation. Strength does not mean refusing support. Sometimes, one of the strongest things we can say is that I need someone to talk to. And one of the kindest things we can say is, you do not have to carry this alone. Friendship is that attribute which teaches us the balance between standing independently and leaning where necessary. There are moments when we support our friends. There are moments when our friends support us. And over time, the roles change. The person who once helped us through a difficult period may later need our patience. The friend who once encouraged us may someday require encouragement. That is the rhythm of companionship. And friendship is not a competition over who gives more. It is a shared understanding that both people will contribute to the relationship in different ways and at different times. Dear listeners, tonight, Resonance from Yesteryears was dedicated to friendship. Yesterday we celebrated Friendship Day. But again, friendship is not confined to yesterday. Friendship belongs to every day on which we choose to care, every day on which we remember, every day on which we listen, every day on which we forgive, every day on which we make time, every day on which we allow someone to know that their presence has made our journey more meaningful. A friend is not merely a companion for celebrations, but it is often the person who remains when celebration has ended. The person who sits beside us when answers are unavailable, the person who reminds us of hope when our own hope has become uncertain, the person who applauds our success without envy and supports our struggles without judgment. Friendship does not promise a life without adversity. It offers companionship through adversity. Dear listeners, this was your studio friend with you on the Sanchota channel of Akashbani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters corresponding 1008 kilohertz.
1: Namaskar, Akashbani Samachar ke saath main Sir Firozi. लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार

की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार

0: भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dhatia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikhabhai Rabdi of Congress with a margin of over 30,000 votes. Congress has kept the Dhatia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in bipoll. Voting for the bipolls to the three constituencies was held on the 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in today's three assembly by elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in the BJP.